0: कीड़ों के भी आएंगे, मगर ये थे।
1: अरे दे माता कंडा मत फगा, हर मकर भी आता निकल जाता कंडा भी फगा।
0: बकरा ये बिरी रही अंदर जा।

0: pariente.
1: खाना आया था खाने
2: मार
1: दबोट हाँ तो नहीं तो आ जाए जल्दी में खाने नहीं थी तो कोई मौरी भी लगने नहीं अरे कसम

0: ஆ கேரு பா பண்ட
1: பட்டல் பட்டல்
0: பட்டல் வரம் சாய் பா பிந்தா
1: மால் கட்டா ரகே
0: கொரு கொரு மால் போத்ரே பாயன் ஜுவே ஜி ஆஜி ஜமீன் கே ஹே ஜே
1: டோக்கார் பியோ ஆயா
0: डुकार और बापा ये वाड़ी में ही केदा वाड़ थी केदा की थी तदे डी वलाई थी बाहर जंगल में निकले एकड़ी की भाजी बने थी नती की खाते जो मिले
1: घटी बंद के जड़ी का वास्तु जे तदे जड़ जड़ बड़ा
2: कितने हांडी है बच्चा
0: से हांडी 70 कन जे वा
2: आतले है ई
0: होए
2: तो लगता ना थी ते एवड़ा से
1: वो तो अलग अलग धन भरो ना आले
0: ये तुम्हारी
1: આ બીજા ભાઈની
2: ઉ એડા વાવ્યા ને ઓડે ઈ બીજા ભાઈની આ મારા મોટા સસરાની તમ બેઠા
1: આ આપણી જમીન છે
2: આપણી જ
1: આ અહીંયા થી કરીને એ બજો અંદર બધી આપણી છે
2: પેલા બહુ અહીંયા આવતા નીકળવાળા હવે આ શું અસર નથી પડતો એટલે આ બધું ઓછા આવે તો આ છોટું આખો દી ભેગો જ ફરે
0: હોય
2: ભણવા નથી જતો
0: ભણવા નથી જતો બે
2: હા
0: તો લુઈ ચાલ ન કરે
2: બાપા ને ઘોડે ઊંટ ચરાવવા પડે

0: पेट पेट धणी वेचारा मेहनत करी था हिन में धणी वटि असां एवर ऐं मंझंदा आहिनि वरे में 40-50 हज़ार जी दवाई कई आहे हिन माल जी छा त माल जी ॾिसो त हीअ परिस्थिती
1: हनी लाखोरी काथे लही वई न लाखोरी हनी हाणे वीचार आहिनि वेसां पई खणी हिन घेटनि वॾा मनू में वेह कसल त कड़ो हज़ार वातार में निकिरो त हाणे
2: अड़ी तपावा तूं कड़ो कड़ो मत ऑइल जो दवा जो अची वञे न

आई पंड उठन जा का कक थो आई जे गोरा ते ने मने अठो अधी करे वरा दे गाई पण वरी पण ये लगे तो ये सफा वरा छडन दा तकन पो कोंडा एतरो मारो 1000 13000 महीने में कथा न करंदा पण वाला

0: केतिरो पर महीने महीने केतिरो व्याजु केतिरा टका रखे ॾिनो खयऊं
1: टके जो कीअं रुकी न 5% आई टे आई ॾो आई
0: मज़ा
1: अठ आई
0: हुनखे मज़ा अचे एतिरा कंदे
1: हिकिड़ी घणी वठंदा आहे कान
0: अलॻि अलॻि
1: मिड़े अलॻि ॿुड़ी कंदो वाधारे व्याजु भरे

कि असी जडा पण वणो त ओडा असा के मालदारी चें ता मिठा कि असी जडा पण वणो त ओडा असा के मालदारी चें ता मिठा या असी कच्छ मुल्क जा मोजीला मालदारी आयु मिठा या असी कच्छ मुल्क जा मोजीला मालदारी आयु मिठा।

0: वालेकुम सलाम। ठीक है। मैं घर नहीं रहा पर। हाँ बोल। हाँ नहीं बने टाइम जुड़े तो ना बने अलाई।
1: गाना
0: हाँ टाइम जुड़े ना तो जल रहे जो कम मत हुई जी समझी कर पुता की रे पूरा जो जानी तो ही तो पैर आ चो ने सुमो रही यार ना।
1: क्या आया क्या?
0: ठीक है ठीक बस प्या हाल है भान जी दुआए।
1: दो आला ने माइट रंग यार
0: बस क्या आयु क्या ना कथे रहो मजरा
1: ये जरूर वाली भी आई कर दे।
0: अरे सायरी कैडी बनानी तो के वफा जी को बेवफाई जी को।

0: साढ़े बनानी
1: बेवफाई शायरी।
0: बेवफाई जी तो
1: आओ हाँ
0: आखिर गायल करे भाई।
1: हाँ
0: हाँ
1: क्या तो धंधा करो करो जरा।
0: धंधा उठा कर डाला ही तो रहती मेरा कहीं आज जर दस हजार समझे नौ वर्ष बीत गए आनो खाली धंधे ही पुरते हैं जरा उठा कर डाला ही रहती मांडा बांडा को लोग नहीं जरे
1: तो गाड़ी जाती है गाड़ी में लगी है तो
0: हैं
1: गाड़ी जाती है गाड़ी गाड़ी में लगी है तो
0: ना रे गाड़ी ने झंझट का नहीं उठा गाड़ी बराबर आने तेरे ती महिला है पे गाड़ी में खटारा में का धक्का चले जा।
1: यही बात होती है।
0: कना बड़े साधन सीधो ये धंधो बराबर ना बण को टल थे तो मा तारे दे पे हो जे टोकरो बेड़ो हो जे
1: सही बात है। रेती भी भरा था ना जड़ी ने कोई फेरा तो करूंगा ना
0: हाँ नहीं तो नहीं मैं भरे कर गोठन खाली करने का
1: बोटम खाली करनी कड़े सही तो बिठाओ दें
0: एक थे 100 रुपया के थे 150 के कड़ो 120 और 30 होगा। काहे में ये 100 रुपया फैक्ट्री ने भाग लोकल में समझी कन वजन 100 के कड़ो 100 रुपया 4 के थे कड़ो 5 वजन
1: नोरे में था हुआ है।
0: निवरे का नहीं ठाव को फरना कन हलना कन का।
1: मैं यूट्यूब पे तो कुल जी शायरी बनाई है घटा घटा कुल जी हलाई हुई है यूट्यूब पे शायरी तो जिन कुल के माँ पसंद क्यों आनी
0: हाँ
1: लाइक क्या बोला
0: ठीक यार ये तो जा बार
1: ये मैं आप बार कौन हो जाएंगे तो शायरी लेके तो मुरंगा
0: ओ गड़ो
1: ओ
0: है वो आए वो हमारी चैनल को लाइक करो और शेयर करो फॉलोअप करो ने चाहे सजो की करो ना बराबर तो हो जो फोटो डाला है फोटो डाला टाइम जोड़े तो ना बना हला से तुम।

0: ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਈ ਗਿਆ
1: ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਬਸ ਗੈਰਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ
2: ਗੱਤ ਗੱਤ ਦੀ ਦੇਣਾ ਤੇ
3: ਸਰੀਰ ਘਟਿਓ ਜੋ ਗੱਤ ਘਟਿਓ
4: ਹਣੇ ਵਾਡਾ ਨਾ ਦੇ
3: ਸਰੀਰ ਘਟਿਓ ਤੇ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਲਾ ਵਿਆਧੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ
4: उठी तो अड़ो न थो मेहनत न थी कि राशि कारण न थो कि दवा न थी जान थी
3: खाली रखे समझ
4: कुदरत हसन भाभी
3: मणी बबो उधर नहीं करो ना भाई वा
4: ना पांच मन टुटी गयो वस्तु इतनी निगार नुकसान थई नी को इन के नेरा जे ई हाने पांच बचई नी
3: हां
4: कुदरत दीदी ते एनी में जवाब
3: नहीं मज थई जो गल सच्ची है
4: बाकी पहला वाडे जो ना दवाड़ी धन फेरा नहीं आज चान से उतरी हुई मान
3: पण आई लगो वरी अच्छी दवा सामन रे उठी में उठी में बरकत थिंदी है नेरजा
0: बरकत दीदी कुदरत ते पानी ना है ना
3: आई अल्लाह ते भरोसा रखो
0: ना ना भरोसा अंत जे
3: हैं
0: अलावा अगर बीज जो आ रहा
3: है ना आ रहा है
0: वो खापे ना ढाका ये ना
3: गाय रबारी वहाँ के ना मतलब इस सामने दिखे तो ये कोला बब गनी गनी पर पास ही दिखे क्या आज भाई होना चिंदो
4: ही होना चाहिए आज जल न चाहे मन न चाहे तो पे नुकसान वाली वस्तु है ना इनके ता बार दो है इनके सामु भोगो वाली होता से आदे वो बोला वो बकरी दे नोटी गेड़ी
3: ફરી પાછી
4: મારા યું તે ને પાછી ગડાઈ ઓની મે મળે સરખી થઈ
3: તો આઈ સમજી ગયો કે મન મે એડો એટલો આંકે થઈ ગયો કે